नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडिलेड को 103.1 FM भारतीय प्रसारण का ये हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस्ट के साथ। ये कार्यक्रम आप ऑनलाइन भी सुन पाएंगे www.5bbi.com.au। तो सुनते हैं पहले ये गीत, उसके बाद कार्यक्रम में और बातचीत करेंगे।

श्रोताओं, जहाँ हर देश में कोई ना कोई ऐसा स्थान, स्मारक, पर्यटन स्थल व भवन होता है जो उसकी पहचान होता है, ताजमहल को भारत की पहचान पर देखा जा सकता है, तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका की पहचान कहा जा सकता है। आज की पीढ़ी के लिए ये तथ्य रोचक हो सकते हैं कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को फ्रांस की तरफ से तोहफे में मिला और यह 17 जून के ही दिन अमेरिका को सौंपा गया था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की स्मृति में फ्रांसीसियों द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों के संयुक्त प्रयासों से किया गया था। दोनों देशों की सरकारों के बीच हुए एक समझौते के तहत अमेरिका के लोगों ने इस मूर्ति का आधार बनाया और जबकि फ्रांसीसी लोगों ने मूर्ति को आकार दिया था।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडिलेड को भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम, मेरे यानी विनोद बिस्ट के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au पर।

तो श्रोताओं, जैसे आप जानते ही हैं कि हमारा ये जो एडलेड शहर है, पूरा साउथ ऑस्ट्रेलिया फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। इसमें विश्व की सभी कम्युनिटीज और लोकल कम्युनिटीज जो हैं, हर समय कुछ ना कुछ त्योहार लेकर आते हैं इस शहर में। आपने देखा होगा एडलेड शो ग्राउंड में साल का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसको एडलेड शो कहते हैं, जो हर साल अगस्त के महीने में होता है। और अगस्त से ही हम भारतीयों के भी त्योहार शुरू हो जाते हैं सभी कम्युनिटीज, क्योंकि भारत भी अपने आप में एक विशाल देश है, हमारी भी कई संस्कृतियों का मिश्रण है। तो हर कम्युनिटी से कुछ ना कुछ इस शहर में होता रहता है। यहाँ एडलेड में लगभग 200 से ऊपर कम्युनिटीज हैं, जिसमें लगभग 50 से 60 के बीच में भारतीय कम्युनिटीज हैं जो अपने अपने कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करते रहते हैं। तो हमारे लोग अगस्त से लेकर जनवरी तक व्यस्त होने वाले हैं इन कार्यक्रमों में।

श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडिलेड को 103.1 FM भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस्क के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au पर। तो मैं बात कर रहा था एडिलेड में चल रहे सामुदायिक त्योहारों का। अभी दीपावली का जो समय चल रहा है, हर समुदाय अपने अपने तरीके से इस दीपावली को मना रहा है। वहीं स्वामीनारायण भुज संस्था के द्वारा 21 अक्टूबर दीपावली का बहुत बड़ा पर्व उनके मंदिर में मनाया जा रहा है। वहां पर फायरवर्क्स और बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम, वक्ताओं द्वारा रखी जाने वाली बातों का बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। तो आप सभी इस दीपावली में विश्वास रखने वाले इस कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। ये तो जाना मत भूलिए BAPS Adelaide।

श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडिलेड को 103.1 एफएम भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन रहे हैं www.5bbi.com.au पर।

ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडलेट पर भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस्ट के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au पर।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे आकाशवाणी एडिलेड को 103.1 FM भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस्क के साथ। इस कार्यक्रम को आप आगे भी ऑनलाइन सुन पाएंगे www.5bbi.com.au पर। अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए विनोद बिस्क को। नमस्कार, प्रणाम।